जाता वालिवा पुला परिपुलेंति साखलं एवा मेवा इतो तिन्नं एतानं उपकपति इचितं पतितं तुम्हं किपमेवा समिच्छतो सप्पे पुलेंतु संकपा चन्तोपनरसो यथा